0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां

नमस्कार श्रोताओं, यह है विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। तो बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले

0: सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। जो लोग आलोचनाओं से बचना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र तरीका है कुछ भी काम नहीं करना। अगर हम कुछ करेंगे तो आलोचना तो होगी, इसलिए आलोचनाओं से डरे बिना आगे बढ़ना चाहिए। ये कथन अरस्तु का है। ये था आज का चिंतन और भक्ति संगीत।

देशगान के साथ ही वंदनवार अब संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 314। इसमें आप सुनेंगे लंका कांड, संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, इसका भाग 2। कलाकार गायक पंडित डॉक्टर पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे। और आपको बता दें संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह और शाम 6:45 पर। 7:30 पर हम है राही प्यार के। आज सुनिए हसरत जयपुरी के लिखे कुछ नगमे। समाचार प्रभात होगा सुबह 8 बजे और 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार हसरत जयपुरी पर। आलेख और स्वर आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुति रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। रंग तरंग दिन में 11 बजे, हिंदी में समाचार दिन में 12 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुनिए। सुरीला सफर तय कीजिए हमारे साथ दिन में 1 बजे। श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे सुनिए दिन में 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम होगा आज दिन में 4 बजे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक। और इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा, जिसमें आपको देंगे जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। आज आप सुनेंगे तबला वादक आशीष बिस्वास से यूनुस खान की बातचीत। संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। हवा महल का समय होगा रात्रि 8 बजे। इसमें सुनिए नाटिका जमीन के लोग, लेखक VM आनंद, निर्देशन दीनानाथ का। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15। समाचार संध्या सुनिए रात्रि 8:45 पर और 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। छाया गीत कार्यक्रम सुनना ना भूलें रात्रि 10 बजे। आलेख और स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 पर और रात 11 बजे रंग तरंग। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।
ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 314। आज आप सुनेंगे इसमें लंका कांड।

अंगद के क्रोध में हाथ पटकने से पृथ्वी का प्रकंपन देख रावण अपने योद्धाओं को उन्हें मार डालने का आदेश देता है। कहता है, इसे मारकर सब योद्धा सभी दिशाओं में दौड़ जाओ और जहां कहीं भी वानर रीछ दिखाई पड़े उनको खा डालो। इस पृथ्वी से ही वानर और भालुओं का अस्तित्व मिटा डालो और फिर जाकर इनके स्वामी दोनों तपस्वियों को जीते जी पकड़कर यहां ले आओ। इस मूर्खतापूर्ण आदेश पर अंगद मुस्कुराए, फिर क्रोध में गरजे, अरे निर्लज्ज, तुझे मेरे बल का आभास पाकर भी भय नहीं लगता? पर स्त्री चुराने वाले पापी मंदबुद्धि, तेरा काल आ पहुंचा है। मैं अभी तेरा वध कर देता, किंतु ऐसा करने से श्री राम के वाणों की प्यास नहीं बुझेगी। इन शब्दों के साथ अंगद ने धरती पर पैर रोप दिया। बोले, यदि तू मेरा पैर धरती से उठा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम भी लौट जाएंगे। अंगद की ये चुनौती सुनकर मेघनाथ तथा सभा में उपस्थित अन्य योद्धा मन ही मन हर्षित हुए। एक एक कर वे अपना पूरा बल प्रदर्शित करते हुए अंगद का पैर उठाने की चेष्टा करते हैं, किंतु उसे उठाना तो दूर, वे उसे हिलाने में भी असमर्थ हैं। लज्जित होकर वे अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में सुनिए जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। उस्ताद अमान अली खान साहब अमर भिंडी बाजार वालों ने अनेक बंदिशें बनाई हैं। मध्यलय में एक ताल में निबद्ध भिंडी बाजार वाले उस्ताद अमान अली खान अमर की बंदिश अमीर खान साहब गाया करते थे, तो वही बंदिश राग हंसध्वनि में मैं गाकर सुना रहा हूँ।

यह बंदिश मुझे बेहद पसंद है जो आमिर खान साहब का खुद का बनाया हुआ है। वह राग हंसत ध्वनि का तराना मैं आपको सुना रहा हूँ।

भिंडी बाजार वाले उस्ताद अमन अली खान साहब अमर बहुत ही अच्छे साहित्यिक रचनाकार थे। उनकी बंदिशों में यह एक हंसध्वनि की बंदिश बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आज कई लोग गाया करते हैं। तो अमन अली खान अमर की वह खूबसूरत बंदिश हंसध्वनि में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अब मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा हूँ जो आमिर खान साहब ने झनक झनक पायल बाजे में प्रस्तुत की है।

0: संगीत सरिता में आज आपने गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुनी, ख्याल और तराने की विशेषताएं। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की थी। इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी आप कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनेंगे।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कुछ पलों का इंतजार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वीको वजिदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

ये गीत अभी आपने सुना मयूर पंख इस फिल्म से। इसे आवाज दी लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत बनाया शंकर जयकिशन ने। आपको बता दें हसरत जयपुरी की जोड़ी संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ बेहद लोकप्रिय रही। आइए इसी तारतम्य में आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत दीवाना फिल्म से, आवाज मुकेश की, लिखा है इसे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश किस का गाया ये गीत। फिल्म का नाम श्री 420। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: मोहिनी फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले का स्वर, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, एन दत्ता ने तर्ज बनाई।

हसरत जयपुरी के शब्दों में मोहब्बत की मिठास और भावनाओं की गहराई आज भी महसूस होती है। आइए उनके गीतों के साथ इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं, मगर अब कुछ युगल गीतों के साथ अगले कार्यक्रम में। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हम हैं राही प्यार के, ये लेकर आज आपके साथ हूँ मैं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपको सुनवा रहे थे हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे कुछ खूबसूरत नगमे। तो आइए इस युगल गीतों के कार्यक्रम में सुनते हैं तेरे घर के सामने। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

सूरज इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे रचा है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं

0: अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था सुहागन फिल्म से, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, मदन मोहन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शेरा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने इसे गाया है। हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत।
6: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से, बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा,
7: अरे जा जा
8: जा जा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे जा।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ससुराल फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी ने इसके अल्फाज लिखे हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

हम हैं राही प्यार के, आप कार्यक्रम सुन रहे थे विविध भारती से। आज मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे कुछ लोकप्रिय गीत हमने आपको सुनवाए। अब दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आ गया नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क,

0: सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करनाल रोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
4: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट जाने शुरू हो चुके हैं।
2: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी पैसे पर। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब पैसे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज अनेक लोग सफलता का मापदंड केवल धन संपत्ति को मानने लगे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी और आलीशान घर से आंका जाने लगा है। इस सोच ने समाज में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ में कई लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं। दिन रात धन कमाने की चिंता में वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों को भी महत्व नहीं देते। उनकी नज़र में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

किया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जाती है। गलत काम के पीछे अक्सर अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह ही होती है। ऐसा धन क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये भी सत्य है कि पैसा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन सम्मान का विषय है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, साधन नहीं। वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम पूर्ण रिश्तों, संतोष, नैतिक मूल्यों और मानवता में भी होती है। पैसा जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन खुशियों, विश्वास और अपनत्व का स्थान नहीं ले सकता। पैसे को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वह वास्तव में योग्य है। पैसा जीवन का आवश्यक साधन है, परंतु जीवन का सर्वोच्च मूल्य नहीं। धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों, रिश्तों और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, पर पैसे से प्यार, अपनापन, स्नेह नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे का हमें गुरूर भी नहीं करना चाहिए।
1: काहे

0: कर है।
1: जब पैसे का दुरुपयोग होने लगता है तब वही पैसा अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना। आज के समय में अनेक लोग अपने आय का बड़ा हिस्सा दिखावे, फैशन, अनावश्यक खरीदारी, महंगे गैजेट्स, पार्टियों और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। कई बार लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन और मानसिक तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी पैसे के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दूसरों की जीवन शैली देखकर लोग बिना आवश्यकता के नई नई वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कई बार वस्तुएं केवल इसलिए खरीदी जाती है कि वे प्रचलन में है, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, जो कि हमारे पुणे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरमान मलिक का गाया ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने। रश्मि विराग ने इसे लिखा है अजहर फिल्म का नाम।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। विविध भारती से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बाहुबली द कंक्लूजन। इस फिल्म का गीत मधुश्री की आवाज में, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा है, MM करीम का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: हाफ गर्लफ्रेंड, इस फिल्म का गीत अब सुनिए श्रेया घोषाल और फरहान सईद की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है, संगीत फरहान सईद का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और चित्रलोक कार्यक्रम चल रहा है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अजय अतुल का गाया ये गीत फिल्म धड़क से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।

लैला मजनू इस फिल्म का गीत अब सुनिए अरिजीत सिंह और जोनीता गांधी की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना है और निलाद्री कुमार ने इसे संगीत से सजाया है।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी ना कोई संदेश
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। साथियों, हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का ही वो दिन है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सही दवा, सही उपचार, स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर संवाद रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर मरीज का महत्वपूर्ण अधिकार है। और आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। ड्रीम गर्ल इस फिल्म से मीत ब्रोज ने इसे गाया है, साथ दिया है अल्तमश फरीदी ने, शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, मीत ब्रोज का संगीत।

0: मलंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन की आवाज में। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा था, द फ्यूजन प्रोजेक्ट म्यूजिक।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती से, और अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।
1: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जींचा संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000+ अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील

0: 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
1: मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
2: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
3: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है, जब हसरत जयपुरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

लघुकथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने खुमार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पहलिया

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,

पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: तुम मुझे। आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी, तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये
0: जी। तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
1: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने बीएससी किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो
0: है?
1: मैंने बीएससी के बाद सीधे हिंदी में एमए किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ और एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
1: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिख ली, जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
0: जी जी
1: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की तो मैं कहानी की तरफ आई।
0: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके बताते नहीं थे कि कहानी लौट आई है। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी।
0: क्या
1: वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
0: जी।
1: तो मुझे

0: लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का, जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
0: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूँ उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता। वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो, मतलब अगर मैं बात कहूँ तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका, वेब पोर्टल, जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है, वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था
1: जी।
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है, और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहां पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपके साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं, कैसे आपके जहन में ये विचार आया? विस्थापन की बातें हैं इसमें।
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ, तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है, जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था। तब पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य एकेडमी की एक कार्यशाला हुई
0: थी। अभी युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से।
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसे होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिजोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी।
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिजोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी।
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं। तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की, तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
0: जी, जी।
1: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं, तो तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा। तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, इतना आसान नहीं था,
0: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताज़ा की, करवाई, कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों

0: में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा त्रासद होता है, तो
1: अवांछित स्पर्श।
0: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा, जिसमें स्त्री पात्र है, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती है?
1: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ।
2: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जींचा संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
1: तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा। ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं। तब मैंने एक लेख पढ़ा था पंचकन्याओं, द वुमन ऑफ सबस्टेंस। एक आईएएस अधिकारी थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, उन्होंने इन पंचकन्याओं पर लेख लिखा था कि ये वे स्त्रियां हैं, ये पांचों जो कन्या कही गई, लेकिन इनसे एक से अधिक पुरुषों से इनके संबंध रहे। तो मैं चौंक गई कि ऐसे फिर क्यों कन्या कहा गया होगा। तो उनका कन्या होना उन पुरुषों की छाया में होने से नहीं था, वो अपने आप में कन्या थी।
0: जी जी,
1: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी, सतियों की तरह वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थी। और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई।
0: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है। यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा?
1: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था।
0: हाँ।
1: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
0: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती
0: क्या बात है
1: लेकिन पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से
0: जी,
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा, तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा
0: जी, जी।
1: तो मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बात है कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे
0: जी,
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया
0: जी। तो बात कथक की चली है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूं और कोई बड़े आयोजन में भाग लूं, हिस्सा लूं?
1: वही बात फिर आयावरी की आ जाती है ना कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए, तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता ये कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं, तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूँ कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय
0: जी जी।
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया
0: जी।
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा
1: वो लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर अधूरा सा लगे।
1: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती रह जाती थी और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओ में दिल रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
0: क्या बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुना

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका। हाँ, हम जानते थे क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे,
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुई, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था, उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में, स्वतंत्रता से पहले, उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने यहाँ बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
4: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
3: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
4: गजब, क्या बात है।
3: तो ऐसे ऐसे अगर मैं कहूँ कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
4: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया। निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
3: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
4: जी।
3: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है, और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसके विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है, वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलेन है। तो वो लिखने में मुझे आनंद आया, क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ। मैंने वो आंधियां देखी हैं, पीली आंधियां जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियां घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
4: क्या बात,
3: तो
4: राजस्थान में,
3: राजस्थान। तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे। तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियां लिखा, और खाप पंचायतों का दौर था, तो वहाँ पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्जाम लगता है, और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियां मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है, जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
4: क्या बात है।
3: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं, और कोई भी दृश्य रचें, तो हमेशा कहा जाता है ना, कहानी लिखिए नहीं, दिखाइए। तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
4: क्या बात है। तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूँ, और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं, कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ही, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है, तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। या अब हम आपके इस पर आते हैं, शाल भंजिका। तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
3: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक

0: कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई क्योंकि मेरे पास
1: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
0: जब रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा, तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र, तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं। और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो। तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
1: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपके आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ।
1: क्या बात है, हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मेरे लास्ट जो तीन पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
1: अच्छा,
0: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है वो सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
1: क्या बात है।
0: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहां नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
1: जी जी,
0: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
1: बिल्कुल।
0: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बर्तानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतु लक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
1: जी जी।
0: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं। लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
1: जी।
0: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
1: और यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था? ये
0: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहां रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का। तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में। मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूँ। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरी एक सूंड है।
1: जी जी जी।
0: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरीटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
1: क्या बात है।
0: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोधपरक है, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
1: बिल्कुल। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे हैं और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना कैसे, ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
0: परकाया प्रवेश।
1: और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका जो यायावरी पर है, किनाया
0: जी। जी
1: और विदेशों की यात्रा के दौरान उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
0: नहीं, नहीं वो घुमक्कड़ी वो अलग है, वो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों से वो तो यात्रा वृत्तांत ही है, लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों

0: बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी। तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा और शाम को जम के डांस करते थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं तुर्की की जो यात्रा थी,
1: ये हिस्सा आपकी किताब में भी है,
0: बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
1: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है, वो प्रेम हमें लगता है
0: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरीके की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है। एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
1: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। तो मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
1: तो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
0: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं,
1: शुक्रिया।
0: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो सखी सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है। तो उन के सानिध्य में मैं रही बचपन से, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में, कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है। और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रही है।
1: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहां कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
0: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह है कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है। और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है, वहां पे बिल्कुल माहौल बनाया जाता है। क्या

0: जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के वो वस्त्र पहने हुए,
1: अच्छा
0: और जेन ऑस्टिन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी साहित्य के गलियारों से।
1: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
0: पहली बार तो मैं घूमने गई थी और संयोग से मैं जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए। तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
1: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली है जहाँ पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
0: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं कठपुतलियां कुर्जा स्वांग ठगिनी सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं। तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
1: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और?
0: हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो साथ
1: हिंदुस्तानी,
0: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
1: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां हो,
1: ज्यादा ही है ममता, 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा

0: सा मिली, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं
1: जी।
0: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें हैं। तो चाय बागानों में बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी तो वन्या में वो कहानियां हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं।
1: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
0: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी
1: जी। और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी पढ़ाई के दिनों में, शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
0: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
1: अच्छा,
0: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
1: जी।
0: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था
1: जी। मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही है कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो। लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

भजन सुमन इस एल्बम से आपको सुनवा रहे थे ये भजन, जिसे पंडित रामानंद शर्मा के पंडित रामानंद शर्मा ने इसे अपने ढंग में ढाला है। गोपाल, सुखदेव, कौशेंद्र, राघवेंद्र शर्मा की आवाजें आपने सुनी, शर्मा बंधु का संगीत इस भजन में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं मनहर उदास की आवाज में ये गजल, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बज़्मे ख्याल इस एल्बम से आप सुन रहे थे गजल दिलराज कौर की आवाज़ में। सईद राही ने इसे लिखा, उत्तम सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में इब्राहिम अश्क का ये कलाम,

अली मोरे अंगना, इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। शुभा मुद्गल और साथियों की आवाजें, शहाब अलाहाबादी के बोल और जवाहर वट्टल का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये कव्वाली, जिसे गाया मोहम्मद रफी और साथियों ने। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन

0: रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
0: चिट्ठी ना कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जवाहर वट्टल का संगीत आप सुन रहे थे, बोलो तारारा। इस एल्बम के गीत में आवाज दलेर मेहंदी और साथियों की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं नाजिया हसन और जोहेब हसन की आवाजों में इंदिवर के बोल। बिद्दू का संगीत एल्बम बूम बूम से सुनिए ये गीत।

नाज़िया हसन और जोहेब हसन की आवाज़ों में इंदिवर के बोल आप सुन रहे थे। बिदु का संगीत बूम बूम एल्बम से ये गीत आपने सुना। रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सपना अवस्थी और अनु मलिक की आवाज़ें, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत इस गीत में जिसे हमने लिया है चाइना गेट फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 में ये बात कही।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर्स। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द पिलर 6 इज अबाउट टैलेंट।
0: 3 दिन का ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मन्ना डे की आवाज में आनंद फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसे गीत यादों की महफिल कार्यक्रम में चुने हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर्स हमें नजर आते हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म से गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसलिए कुछ ऐसी फिल्मों के गीत हमने चुने हैं जिनमें डॉक्टर और मरीज नजर आते हैं।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे सफर फिल्म के इस गीत में। इंदिवर ने से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गुलशन बावरा के बोल आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में परिवार फिल्म के इस गीत में संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी परिवार, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर।

0: बेमिसाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आज है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसलिए हमने कुछ ऐसी फिल्मों के गीत लिए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

आ गले लग जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, तो ऐसी फिल्मों से गीत लाए हैं जिनमें डॉक्टर्स नजर आते हैं।

मुन्ना भाई MBBS फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज में अब्बास टायरवाला ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिन फिल्मों में डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं कलाकार। कबीर सिंह फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, सचेत परंपरा का संगीत।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आपने सुना और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बता रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज की भारत रिश्तों के बदलते रंगों की कहानी है। इंसान परिवार के बीच पलता है, दोस्तों की महफिल में खुशियां बांटता है और जब प्यार दस्तक देता है तो वही दिल किसी खास हमसफर का हो जाता है। दोस्ती में बेफिक्री है, प्यार में अपनापन और परिवार में सुरक्षा। जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों के सुरों से मिलकर बनती है। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर यारों का यार भी बना रहता है और वक्त आने पर खुशी खुशी प्यार का शिकार भी हो जाता है। जिंदगी का असली मजा यही है कि यार महफिल को जिंदा रखें और हम सफर खामोशियों को भी हसीन बना दे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अकेले आना हमारी मजबूरी है पर अकेले रह ना पाना हमारी खूबसूरती है। परिवार हमें पहचान देता है तो यार हमें उस पहचान पर हंसना सिखाते हैं। उनके साथ चाय की प्याली भी महफिल बन जाती है और गम की शाम भी दिवाली। और वो अजनबी हसीना वाला जादू भी कुछ अलग से नहीं होता, दिल अगर जिंदा है तो किसी ना किसी का शिकार तो होता ही है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं यारों का यार रहकर ही प्यार का सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि यारी हमें इंसान बनाती है और प्यार हमें किसी एक पर स्वयं को समर्पित रहना सिखाता है। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको, जैसे इस गीत में कहा गया था कि बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, तो आपको किस तरह से दोस्त मिले? क्या काफ़ी मुश्किलें हुई या बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं दोस्ती? ये तो हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बता सकते हैं।

बात एक रात की, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सवाल का सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जहां बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का होना ही दिल को सुकून दे जाता है, और जब दोस्ती में प्यार की मिठास घुल जाए तो रिश्ता और भी अपना सा लगने लगता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं दिल से बनते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही, दोस्ती का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। हमारे एक साथी और हैं, वो कह रही हैं, दुनिया में हम अकेले आते हैं, परिवार मिलता है, फिर नाते रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्ती यारी बनती है, मिलने वाले कुछ अजनबी हमारे सबसे करीबी और परिवार जैसे बन जाते हैं। सच्चा दोस्त सुख दुख में साथ निभाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए हम सफर बन जाते हैं तो कुछ प्रेम और स्मृतियों के रूप में हमेशा दिल में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती के बारे में कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो तन्हाई और महफिल के बीच ताउम्र झूलता रहता है। जन्म के साथ जो परिवार मिलता है वो बुनियाद बनता है, लेकिन इंसान की असली पहचान और आज़ादी उसके दोस्तों के बीच खुलकर सामने आती है। दोस्त वाकई हर गम की शाम को दिवाली बनाने का हुनर रखते हैं। वहाँ औपचारिकताएं नहीं, बेतकल्लुफी और सच्चा सहारा होता है। लेकिन दोस्त अगर आपको छेड़ने पर आ जाए या उलाहने देने लगे तो कुछ अलग ही हाल होता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें बताइए, क्या कभी आपको दोस्तों से ऐसे ताने उलाहने मिले हैं? कौन सी फिल्म का गीत है ये भी बताइएगा।

0: से तौबा।
1: फिर सुबह होगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस तरह के ताने उलाने क्या आपको आपके दोस्त देते हैं, कभी मिला है ऐसा ताना हमें भी बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन की यात्रा एक कोरे कागज की तरह शुरू होती है, हर इंसान इस दुनिया में अकेले आता है, नितांत निश्चल और शांत। जन्म लेते ही परिवार मिलता है, जहां निस्वार्थ और सुरक्षात्मक प्रेम मिलता है। वो प्रेम की ऐसी बुनियाद है जो इस विश्वास को परिभाषित करती है कि इस अजनबी दुनिया में हम अकेले नहीं है। वक्त आगे बढ़ता है, बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही यारी दोस्ती से जुड़कर प्रेम की पहचान होती है, फिर आजादी का दौर अल्हड़पन रहता है। यहाँ जिंदगी के सफर में कभी कभी हम अकेलेपन की जरूरत भी होती है। ये कोई सजा नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम को समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम थोड़े थोड़े परिपक्व होते हैं तो जिंदगी में हम सफर का आना, प्रेम और जिंदगी को नए रिश्तों से जोड़ना एक ऐसी भावना को जागृत कर देता है जिससे जिंदगी करीब करीब मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यही है कि आदमी दुनिया में अकेला आता है और रिश्तों में रहता है, फिर सच्चाई समझ लेता है। उसके बाद देखा है अकेले में जो सुकून है या यारों के साथ जो सुकून है, कुछ भी ऐसा ही, और अंत में अकेला चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम किसी प्यार के शिकार हैं, ना किसी राह में लाचार हैं, हम तो बस दिलदार तरानों और खूबसूरत नगमों के यार हैं। जिंदगी के हर मोड़ को मुस्कुराहट से जीना और गीतों की महफिल से खुशियां बांटना ही अपना अंदाज है। शिकारी हो या शिकार, हम तो बस दोस्ती और मोहब्बत के इस हसीन सफर के हमराही हैं। क्या कहने हैं आपकी बात के। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज जीवन के सफर में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हर मोड़ पर बदलते हैं। इस इबारत में भी बदलते रिश्तों की ओर इशारा है। शुरू में परिवार से जुड़ते हैं, फिर यार दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं, फिर कभी कभी हमारा मन अकेले रहने की जिद करता है, कोई हसीना अचानक हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम रिश्तेदार दोस्त सबको भूल कर उस हसीना के दीवाने हो जाते हैं, दुनियादारी तक भूल जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे और एक साथी कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि दोस्त अपनी जगह होती है, दोस्ती और प्यार अपनी जगह होता है और परिवार एक तरफ होता है, लेकिन आज के दौर में अपने प्यार को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे कवर साथी का कहना है क्या, ये हम बताते हैं आपको। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई, परिवार सबसे बड़ी दौलत और सच्चाई है परिवार, एक खुशहाल जीवन और इस जीवन में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सब रिश्ते अपनी अहमियत रखते हैं, अकेले आने के बाद हर रिश्ता हमारे जीवन में अपने आप ही बनने लगता है। बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ धोखा लालच बेईमानी से निभाते जाए, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने उलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपके हमसफर के आने के बाद आप वाकई दोस्तों से दूर हो गए या ऐसा सिर्फ कहा जाता है। ये सारी बातें तो आप बताएंगे ही, साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, संगीत किसका है।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं रोज़ फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूँ और सोचता हूँ कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। भाई आपकी ये इंतज़ार जो है जल्द ही ख़त्म होगा, ऐसे हमारा मानना है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब दोस्त ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफर की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फोन करता है, इसे और काम नहीं क्या, ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह। इतने पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं, अच्छे हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली जीते हैं, फिर अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिए और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारी और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज्यादा बातें करती नजर आ रही है, कभी समुन्दर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आजाद परिंदों की जान है दोस्ती, कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें

हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज में है।

0: केंद्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं अनुसूची एच एच वन आणि एक्स अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या औषधांची नियामक चौकट बळकट करण्यासाठी ड्रग्ज रूल्स अर्थात औषध नियम 1945 सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय या औषधांची खरेदी करता येणार नाही. प्रस्तावित सुधारणांमधून या औषधांची अनधिकृत उपलब्धता आणि विक्रीशी संबंधित त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न असून अतिरिक्त नियामक उपाय म्हणून वैद्यकीय दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने प्रस्तावित सुधारणेबाबत संबंधित घटक आणि नागरिकांकडून येत्या 30 दिवसांमध्ये हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेलं उपोषण मनोज जरांगे यांनी मागे घेतलं असून त्यांच्या निर्णयाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे. ते आज छत्रपती संभाजीनगर इथं मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रमात बोलत होते. जरांगे यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत कायदेशीर बाबी यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. हिंदी पखवाड्यानिमित्त देशभरात कालपासून हिंदी भाषेच्या प्रोत्साहनार्थ विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आकाशवाणी मुंबईच्या नवीन प्रसारण भवनात तसंच केंद्रीय विक्रय एकांशातर्फे काल हिंदी दिवस आणि हिंदी पखवाडा कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं. प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये T20 मालिकेतला तिसरा आणि अंतिम सामना आज नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर होणार आहे. सामना संध्याकाळी 7:30 सुरू होईल. 3 सामन्यांच्या या मालिकेत भारतानं 2-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. सेमिकॉन 2026 परिषदेचं प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन. देशव्यापी सेवा संकल्प अभियानाला प्रारंभ. 79व्या हैदराबाद मुक्ती दिनानिमित्त तेलंगणात आणि महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात विविध कार्यक्रम. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरात 2023 नंतर प्रथमच वाढ आणि इंधनावरच्या विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: अभी मिस करती हैं हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी. खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे एक साथी ने लिखा. वही हमारे एक साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है. समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है. मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती. एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए. एक साथी कह रही कि प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है. हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है. जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर. ये जीवन के क्रय हैं. एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक है ईश्वर. तो इस जिंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए. जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए. नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था. और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके लिस्ट के 90वें नंबर का जो गीत था वो चल चुका है. एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार. संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है. अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है. अंततो गत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है. ये हमारे साथी का कहना है. और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम से आज तक दोस्ती चल रही है. 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं. भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं और उनमें से कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूँ. कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं. कुछ इस दुनिया से चले गए पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं. ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ जो आपको वो नज़र आते रहते हैं. और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है. हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद. तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आप

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं अब तक। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल 2, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी। अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है। तो यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कहने कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं

भूलते हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं। पर जो दोस्त हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं, और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं। पर हाँ, बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही साथ छोड़कर चले गए। ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है, यही हम कह सकते हैं। लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की, उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म का नाम भी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रही, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनके शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वही हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रहे थे कि 60 साल से वो बातें कर रही हैं फोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती है, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहाँ जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रही हैं कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम हैं। हजारों बार फोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी पैसे पर। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब पैसे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज अनेक लोग सफलता का मापदंड केवल धन संपत्ति को मानने लगे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी और आलीशान घर से आंका जाने लगा है। इस सोच ने समाज में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ में कई लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं। दिन रात धन कमाने की चिंता में वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों को भी महत्व नहीं देते। उनकी नज़र में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट।

अत्यधिक धन लालसा कभी कभी व्यक्ति को अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जाती है। गलत काम के पीछे अक्सर अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह ही होती है। ऐसा धन क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये भी सत्य है कि पैसा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन सम्मान का विषय है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, साधन नहीं। वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम पूर्ण रिश्तों, संतोष, नैतिक मूल्यों और मानवता में भी होती है। पैसा जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन खुशियों, विश्वास और अपनत्व का स्थान नहीं ले सकता। पैसे को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वह वास्तव में योग्य है। पैसा जीवन का आवश्यक साधन है, परंतु जीवन का सर्वोच्च मूल्य नहीं। धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों, रिश्तों और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, पर पैसे से प्यार, अपनापन, स्नेह नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे का हमें गुरूर भी नहीं करना चाहिए।

0: कर है।
1: जब पैसे का दुरुपयोग होने लगता है तब वही पैसा अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना। आज के समय में अनेक लोग अपने आय का बड़ा हिस्सा दिखावे, फैशन, अनावश्यक खरीदारी, महंगे गैजेट्स, पार्टियों और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। कई बार लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन और मानसिक तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी पैसे के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दूसरों की जीवन शैली देखकर लोग बिना आवश्यकता के नई नई वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कई बार वस्तुएं केवल इसलिए खरीदी जाती है कि वे प्रचलन में हैं, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। ला ला ला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
6: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसा युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
7: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
8: Draining the swamp that provided an
9: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में अगला गीत मुकेश की आवाज में छोटी बहन फिल्म का ये गीत सुनिए। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो?
2: बेशर्म, शेखर, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।
1: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रसन्नता हमेशा होती है, और जब प्रसन्नता रहती है मैडम तो ममता जी तो मन कहीं कुछ ऐसा थिरकने को लगता है ना, नहीं भी आता हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को नृत्य करना है, लेकिन पैर की थिरकन एक अपने आप चल
1: थिरकने से कहा जाता है कि डांस एक स्ट्रेस बस्टर होता है
0: जी।
1: आपके बहुत सारे तनाव मन के घुल जाते हैं कहीं, तो अगर आपको नृत्य आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमें लगता है कि बहुत खुशहाल प्राणी कहलाएंगे
0: जी,
1: क्योंकि जरा भी मन उदास होता है, दुखी होता है तो आप नृत्य करने लगे, देखिए आप सब कुछ भूल जाते हैं,
0: बात बिल्कुल सही
1: या
0: है।
1: फिर गाना गाने लगे तो संगीत में ताकत है, लेकिन नृत्य तो ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप सब कुछ भूल सकते हैं
0: जी। और उसमें जब रियाज, समर्पण और अनुशासन जुड़ जाता है, और कई बरसों की शिक्षा अगर उसमें जुड़ जाती है, तो वो बड़े बड़े पुरस्कारों तक और सम्मानित भी हो जाती है वो व्यक्तित्व। जैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं रोशन कुमारी जी, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषकर कथक के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं, और उन्हें जयपुर घराने की अग्रणी नृत्यांगना माना गया है। और रोशन कुमारी का जन्म अम्बाला में हुआ था। उनका परिवार कला से गहराई से जुड़ा था, पिता चौधरी फकीर मोहम्मद और वे थे प्रसिद्ध तबला और पखावज के वादक, और उनकी माता जी थी जोहराबाई अम्बाले वाली। 1940 का जो दशक था उस वक्त ये प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका रही हैं,
1: और उनकी माँ चाहती थी कि वे एक गायिका बने, लेकिन रोशन का मन नृत्य में लगा रहता था तो वो अपने पिता के बेहद करीब थी। पिता पखावज बजाते और वो घंटों अपने पैरों में घुंघरू बांधकर रियाज करती। उन्होंने 5 बरस की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था
0: जी। और जो शुरुआती नृत्य शिक्षा जो उन्होंने ली है वो ली है के एस मोरे जी से। 40-50 के दशक में फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे वे। उनके प्रमुख गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ घराने के दिग्गज बिंदादीन महाराज के शिष्य थे। बाद में उन्होंने उस्ताद गुलाम हुसैन खान और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी। गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा। वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी।
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए। उनके प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं
0: जी। और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा। एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर।
1: और

0: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भूलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: जी, और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की यह विशेषता थी कि इसमें जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर, पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
0: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज़ के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: करती है नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले, और उन्हीं के बातचीत के बाद खास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे सत्यशील देश पांडे का, इसमें संगीत था, और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया। और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं और कुशलता पर्दे पर वो दिखाती हैं, और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं
1: जी।
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल
1: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर। और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे, कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात,
0: क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है नृत्य से।
1: जी, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और WHO के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों में डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल और मरीजों को एक साथ लाना, और स्वास्थ्य प्रणाली में गलतियों को कम करना। इस साल यानी 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और स्लोगन दिया है सेफ केयर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए सुरक्षित देखभाल। गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं, दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
0: WHO ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयां और जांच की ज़रूरत पड़ती है, और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना, और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है, अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है, कई बीमारियां एक साथ होने से इलाज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं।
1: जी,
0: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को, और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है, ये आज इसका उद्देश्य है।
1: जी, और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए, दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है। और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ममता जी सिर्फ डॉक्टरों का दिन नहीं है बल्कि ये सब हम सबका दिन है, क्योंकि सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली तभी बनेगी जब मरीज जागरूक होंगे और स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थ होंगे।
0: बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और जोड़ना है कि फॉलोअप के लिए तो सजगता जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कई बार एक बार आपकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी और उसको आपने रख लिया, प्रिजर्व कर लिया अपने पास, और जब वापस मान लीजिए खांसी, बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है, वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। जरा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ और कारण हो सकता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई हैं वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुखार की दवा खाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले। और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें।
1: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए स्वास्थ्य का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए, और राजनृत्य की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल हैं, जिसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा देते हैं। और एक नया चलन ये भी चला है, हालांकि पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में वो है कि जिम जाना नियमित रूप से।
0: जी, जी।
1: तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: आया गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा जी कहाँ
1: जी,
0: सोशल मीडिया में उलझी हुई है ना?
1: सोशल मीडिया में उलझे नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के संदेश।
0: तो ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इसी में मिलता है सब।
1: देखिए, हर चीज के लिए ममता जी ये बुरा नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें भी तो होती है ना। देखिए, और अपने जो श्रोताओं से है ये जुड़ने का, बिल्कुल जो सखी सहेली के वक्त जुड़ने का एकदम, उस वक्त लगता है कि हम फोन न हटाएं, अपने पास रखें, ज्यादा से ज्यादा संदेश हम तक।
0: सोशल मीडिया वाले ज्ञान के कौन कौन से मोती हैं जरा देख लेते हैं हम भी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये हमें लोगों से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान का अवसर देता है, लेकिन इसके कारण हमारे व्यवहार में भी बदलाव आया है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयम, शिष्टाचार और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या गलत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सही संतुलन के साथ सोशल मीडिया हमारे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच का माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए कि बदला तो है, दिनचर्या देखिए बदली तो है, कि हमारी सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं होती, हम मोबाइल की स्क्रीन से भी होती है। और आंख खुलते ही फोन देखना, संदेश पढ़ना, सोशल मीडिया पे आए नए पोस्ट देखना और फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में फोन की तरफ लौटना, जैसे हमारी ये जिंदगी की रोजमर्रा की आदत नहीं बन गई, आपको नहीं लगता ममता जी?
0: बिल्कुल लगता है। एक और बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है कि किसी ने अपनी पोस्ट डाली है तो ये देखना कि वो लाइक मिले कि नहीं, कमेंट लिखे कि नहीं लिखे, आमने सामने शायद हम जिस बात को बड़ी ही शालीनता से कहें वही स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत ही कठोर शब्दों में कह जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं तो कई बार बहुत सरलता से कोई बात लिखी जाती है, लेकिन पता चलता है कि उस बात का गलत मतलब निकाल लिया गया
1: और फिर उस पर बड़ी लंबी सी बातचीत होने लग जाती है। कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड कुछ एक बात लिखता है, उस पर फिर जवाब आते हैं और वो बात बहुत

0: भी आगे तक खींच के चली जाती है। लेकिन पहले देखिए ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगा है।
1: बिल्कुल, दरअसल होता क्या है कि हम फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे
0: जी।
1: ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी ओर से बोल रही हूँ।
0: चलिए किसी के भी ओर से हो भाई, एक बात उठना चाहिए।
1: हम तो श्रोताओं की ओर से भी ये बात कह रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सभी की ये लत है कि फोन उठाया और एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगर मोबाइल की गैलरी में चले गए तब तो तस्वीरें, तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें, जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हम ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें तो बिल्कुल समय के हिसाब से चलना होता है
0: जी,
1: और समय का मिलान करते हैं हमारे श्रोता। लेकिन श्रोता बताएं कि वो कितना ख्याल रखते हैं
0: जी,
1: क्या वो कभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट के लिए बैठे और आधे घंटे बीत गए और कहीं जाना था और बैठे रह गए, कि पता चला घर में बहन, पत्नी या माँ ने कहा कि जरा सब्जी दूध ले आना और आप मोबाइल के स्क्रीन पे ही बैठे रह गए। या फिर उल्टा भी कर लीजिए इसको, कि पति ने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा या कोई और काम आपस में बंटवारा हुआ कि हम ये करना और बैठे रह गए। तो ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये बच्चे, बुजुर्ग, घर में पति पत्नी, भाई बहन, सब लोग इसी में लगे हुए हैं,
0: सब शामिल हैं। और देखिए ना, ये चमकती सी जो दुनिया है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको भी जवाब दे दे, हम इन्हें भी जवाब दे दे, अरे हमारे इस मित्र का ये संदेश आया था हम उसे भी जवाब दे दे, या हमने जो डाला था पोस्ट उस पे कितने लाइक्स आए वो देख लें, और अब बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए हैं तो उसका जवाब अभी के अभी देना बहुत जरूरी है, फिर झगड़े हो जाते हैं।
1: और अभी आप जब सोशल मीडिया पे देख रही थी संदेश, तो मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी है बैठे बैठे, तो आप डूबी हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है कि श्रोताओं की टिप्पणियों में आप डूबी हुई
0: जी, बिल्कुल उसमें डूबे हुए थे।
1: कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सोशल मीडिया में आप उलझ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है उसमें बहुत कुछ है, आपके मोबाइल के यंत्र में, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत कुछ है, जानकारियां भी बहुत सारी है, किताबें हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, कहानी कविताएं भी पढ़ सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जवाब देते रहे, चैट करते रहे, हंसते रहे, मुझे भेजते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कई बार आप ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम भूल जाते हैं। आपको बताऊं दीपा
0: जी
1: कि अभी कल ही एक जो फिल्म है हनुमान अंश, उसके उस फिल्म के डायरेक्टर आए थे और विशाल चतुर्वेदी
0: जी,
1: तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि वो कागज और कलम से लिखते हैं, तो मैंने ये सवाल पूछा कि आज डिजिटल युग में आप कागज कलम से ये इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसा उनके बारे में सुना था
0: जी।
1: तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि मोबाइल साथ में रहता था और कंप्यूटर साथ में है, तो कितना भी हम मोबाइल को म्यूट कर लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन पर कुछ न कुछ चमकता रहता है, कोई न कोई संदेश, फिर लगता है कि ये जरूरी तो नहीं होगा मोबाइल उठा के देखते रहना। तो मैंने क्या किया, मतलब ये उन्होंने कहा विशाल जी ने, कि मैंने क्या किया कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके पैक करके रख दिया, और एक हमारा हमारे स्टूडियो में गुफानुमा एक बना हुआ है कमरा जैसा, वहां पे मैं चला गया और कागज कलम लेके, तो 15 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा और 15 दिन तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मतलब मोबाइल से
0: जी।
1: तो ये बड़ी अचरज की बात है आज के युग में, आप 15 दिन तक, लोग 15 घंटे नहीं रह सकते, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के।
0: बिल्कुल, और आज के युग में अगर 15 दिन तक कोई दिखे नहीं, अगर कोई जैसे ये मीडिया से जुड़े कोई व्यक्तित्व है, अगर वो ना दिखाई दे और कुछ जवाब ना दे या कुछ प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसा लगता है इन्हें क्या हो गया या क्या बात है भाई, या तो ऐसा लगने लग जाता है अहंकार तो नहीं आ गया, या यूं लगता है हमसे नाराजगी तो नहीं है, और फिर वो पर्सनल मैसेज पे जाकर ऐसा क्यों ऐसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कई बार कुछ अच्छी सी पोस्ट लिखते हैं ना, तो या उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छी सी बात लिखी है, तो
1: जवाब नहीं दिया
0: मैसेज पर्सनल डालते हैं कि जवाब नहीं दिया, उस पर जवाब दो। देखो हमें ना कोई फला, मतलब किसी तीसरे को हमें कुछ ये बताना है या सुनाना है, इसलिए तुम यहाँ पर जवाब दो, तो इस तरह की भी बातें होने लग जाती।
1: और तो और फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और टैग कर देते हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं, कह रहे मैंने तो ये लिखा, अच्छा उसका फिर लिंक भेजते हैं, लिंक पर भी आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फिर मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखा तो फोन करते हैं, कह रहे मैंने ये पोस्ट डाली थी आपने तो देखी ही नहीं।
0: तो इस तरह के व्यवहारों में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। अभी हम क्या देखें या

0: ओरे ताल मिले नदी के जल में, अब आजकल तो शब्द मिले भाषा, भाषा मिले जाके मोबाइल के स्क्रीन पर, यही हाल हो रहा है। और हम बात कर रहे थे यही
1: जी,
0: मतलब सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया तो ये इस्तेमाल करने के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ममता जी। जैसे कि दूसरी तरफ भी एक इंसान ही बैठा हुआ है, तो उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं भी हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या उन्होंने क्या किस तात्पर्य में ये बात कही है, ये भी हमें समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देनी चाहिए।
0: दीपा जी, हम अभी तक तो सोशल मीडिया की नकारात्मक बातें ही कर रहे थे, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं
1: जी।
0: कि एक समय था जब ये माध्यम नहीं था, तो बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ रह जाते थे, पता नहीं होता था। जैसे किसी फिल्म की चर्चा सिर्फ अखबार में हम पढ़ पाते थे। एक समय तो ऐसा था कि रिक्शे पर, आपको याद होगा, वो भोपू लगा के प्रचार होता था रिक्शे पर बैठ के, फिर अखबार में आने लगा, तो हम अखबार के पन्ने पे ढूंढते थे कि कौन सी फिल्म लगी है कहाँ पर, किस टॉकीज में
1: जी।
0: फिर अब इतना आसान हो गया है कि आपको फिल्मों की जानकारी मिल जाती है, थिएटर नाटकों की जानकारी मिल जाती है, किताबें जो आती हैं, हम पहले किताबें सिर्फ नाम से ही जानते थे कि फला साहित्यकार, फला लेखक कवि, उनकी कोई किताब आई है, तो जब हम प्रकाशक से जुड़े होते थे तो हम वो किताबें मंगवा लेते थे
1: जी।
0: तो या फिर अखबार या पत्रिकाओं में उनका नाम, मतलब जो नए लेखक, उभरते हुए लेखक होते थे अनजान, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को जान पाते हैं, उनकी किताबों की जानकारी मिलती है, और

0: आधा घंटे का वक्त है या एक घंटे का वक्त है या दोपहर में आराम का वक्त है खासतौर पे महिलाओं के लिए, या जब सारे घर का काम हो जाता है, या आपका दफ्तर से अगर लौट रहे हैं या व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है आपने थोड़ी सी देर आधा घंटा देख लिया वहां तक ठीक है, लेकिन हम उसी में डूबे रहें ऐसा ना हो। ज्ञान भी बेशक ये अच्छी बात है कि आज हमारे हाथों में ही है, हम चाहें जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और चाहें तो वो कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है।
1: गानों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इंस्टाग्राम पर, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है इंस्टाग्राम पर रीलें बनने लगती है, तो बहुत सारे गाने नए गाने हम नहीं जान पाते हैं, तो वो देख के भी पता चल जाता है। एक तो माध्यम है रेडियो और विविध भारती से तो हर तरह के गाने प्रसारित ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से भी मिल जाती है।
0: जी, ये एक संदेश आया है ममता जी, कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा सोशल मीडिया पर शिष्ट, जिम्मेदार और सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लेनी चाहिए ताकि हम गलत जानकारी ना फैला सकें। और साथ में ये भी लिखते हैं कि हमेशा ये अपमानजनक बात या कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें एक घृणा बढ़े इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, या किसी की व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या वीडियो उसके अनुमति के बिना हमें साझा नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से भी बचना चाहिए और इसे अपने वास्तविक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं, तो आप देखो तो पता चलता है कि, और उससे जब भी कोई संदेश कहीं भेजा तो पता चला कि तस्वीर तो आपकी है और वो व्यक्ति कोई अनजान है, तो ये भी गलत है। ये सब गलत आदतें हैं और इनसे बचना चाहिए। और जिंदगी उन पलों का नाम नहीं जिन्हें हम सिर्फ कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिंदगी तो उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम बिना कैमरे के, बिना पोस्ट किए, बिना लाइक किए, उम्मीद के जीते रहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपके घर की हर बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाए, कुछ बातें निजी भी रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक संदेश ये कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया आज के युग में कई फायदे हमें दे रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजनेस हो या प्रसारण, परंतु कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि हर अच्छी चीज को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। एक और संदेश ये कहता है कि सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक मंच, इस मंच का उपयोग करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जो हर वक्त एक उपभोक्ता की फर्ज बनता है कि इस मंच पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जो समाज के लिए हानिकारक हो, 100 बार सोच विचार कर सत्यता की जांच के बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए।
1: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा देखते हैं और इतनी देर तक उसमें सोशल मीडिया में खो जाते हैं, पर लाइक नहीं देखते, बस कुछ अच्छी बातें ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर सोशल मीडिया के साथ तो उसकी व्यवहार कुशलता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिडन आई की निगाह में काम कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं जानते, यही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी छुप जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
0: एक चीज और थी जो कि हमें अब जरूर बात करनी चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि जो इंग्लिश में लिख दिया जाता है ना, गोइंग फॉर अ वेकेशन, और हम उसमें तारीखें भी डाल देते हैं ममता जी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक कहीं हम बाहर जा रहे हैं। अब अगर किसी का ध्येय ही कुछ अलग है, गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक घर में नहीं है, तो शायद आपके अनुपस्थिति का वो फायदा
1: सुरक्षा की दृष्टि से,
0: सुरक्षा की दृष्टि से
1: ठीक नहीं है।
0: ये ठीक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने तारीख को जा रहे हैं, इस तरह की बात हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ बिल्कुल अनजान। हमारी एक छोटी सी टिप्पणी, एक प्यारा सा शब्द, किसी का हौसला बढ़ाती बात उसके दिन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए यहाँ भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में सम्मान हो, बातों में मिठास हो और दिल में किसी के लिए बुरे भाव ना हो। बिल्कुल सही बात है कि ये जरूर है कि कोई उदास है, दुखी है, तो आपकी एक टिप्पणी, आपका एक संदेश उसके दिल को, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पर ला सकता है।
0: जी, और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि ये वरदान तो बन सकता है, लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शायद हमें ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी के हिसाब से भारी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी, और अब एक सुनते हैं गाना।
0: जी,

0: देखिए त्योहारों का जो वक्त ये चल रहा है इन दिनों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। और ये लोगों ने कई सारे संदेश भी भेजे हैं ममता जी। ये पहला संदेश कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल गणेश उत्सव हर गाँव हर शहर में मनाया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति पीओपी के बजाय मिट्टी से बननी चाहिए। विसर्जन के वक्त नदी तालाब जैसे खुले जल स्रोत की बजाय घर के बनाए कृत्रिम कुंड या टंकी में करें। होली के दिनों में रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिवाली पर बहुत प्रदूषण वाले फैलाने वाले फटाके से बचना चाहिए। रोशनी के लिए तेल के दिए या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने ये बात लिखी है कि हम में से कितनों को ध्यान रहता है कि पूजा पंडाल में मिलने वाला प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट में प्रसाद हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है। एक एक प्लेट करके कितने लाख प्लेट हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया है किसी ने? होली के एक दिन पहले पेड़ों को काटकर अग्निदाह करना कितना उचित है? गणेश जी के आगमन के बाद और दुर्गा उत्सव में कितने पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बैठी है, इसका तो अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। काश इंसान सोच पाते, जब एक पेड़ कटता है तब सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा नहीं गिरता, तब छिन जाता है पक्षियों से उनके घोंसले और हरे पत्ते की ताजगी भी। कहा जाता है कि हमें तो याद है कि बचपन में नानी दादी कहती थी कि जो पेड़ कटता है तो पेड़ कटते वक्त छाल से जो लिक्विड निकलता है ना, रसायन निकलता है, जिसको कि बचपन में इसी नानी दादी यही भाषा बोलती थी, वो देखो दूध निकल रहा है
0: जी।
1: ये दूध नहीं, उसके आंसू हैं, पेड़ के आंसू
0: जी।
1: तो ये अब कहाँ तक ये ठीक है, एक मिथ के रूप में हम मानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पेड़ को जब काटते हुए हम देखते हैं तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और ये संदेश कहता है कि हमें पटाखों प्लास्टिक और अत्यधिक कचरे से बचते हुए प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए। स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए त्योहारों को पर्यावरण से

0: रक्षित इस तरह से बनाया जाए और हमारी खुशियों को और सार्थक इसी तरह से बन सकते हैं। एक और संदेश ये कह रहा है कि आजकल घरों पंडालों में प्लास्टिक के फूल और तरह तरह के सजावट के सामानों से अपने घर की और पूजा पंडालों की सजावट हम करते हैं और यह कचरा पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा है कि सजावट भी आप प्राकृतिक फूलों से करें, प्राकृतिक चीज़ों से करें, जैसे कि आम के या अशोक के पत्ते, प्राकृतिक बंधनवार, वो ही उसका ही इस्तेमाल करें और लाइटों की जगह छोटी छोटी मोमबत्तियाँ और दियों से हम घर को सजा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जो पूजा सामग्री होती है, फूल माला जैसी जैविक सामग्री से खाद बनाई जा सकती है और बाकी सामग्री को अलग करके उचित तरीके से उसे निस्तारित कर लें। त्योहारों में जो कचरा होता है उसे कम करें और खुशी का मंत्र ज़्यादा अपनाएं, तो ये आपके लिए त्योहार उत्सव बना रहेगा, वरना फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख देने लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: और अब बोलिए कि हमारे श्रोताओं को क्या खुशी दे सकता है
0: एक गीत। बिल्कुल।

0: ममता जी देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, हम यहाँ पर बातें करते हैं और तुरंत हमारे जो श्रोता हैं
1: प्रतिक्रिया
0: देते हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भी पेड़ों को काटना बहुत दुख देता है, ये जो आपने बात अभी कही हमें बहुत दिल को भाई है, बहुत अच्छा लगा है।
1: तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी दिल को बहुत भाई
0: जी
1: कि आपने हमारी बात को ध्यान से सुना और त्वरित प्रतिक्रिया दी। और इसी तरह सोशल मीडिया के जो फायदे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, सोशल मीडिया के नुकसान को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और फिलहाल हमें अपनी बातचीत को समेट लेना चाहिए
0: जी।
1: देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बताएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहरी कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाणा महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए। और बुल्ढाणा कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाणा विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाणा जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गाँव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गाँव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बहरस फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों जी को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग बाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरभरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है, हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो भी आता है वो पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी
1: जी, 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपका?
1: ट्यूबवेल है मेरा, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें भी पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
1: जी, जमीन की लेवल नीचे गई पानी की।
0: जी अच्छा, बताइए आप आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिर गणेश उत्सव त्योहार चल रहा है, इसके अवसर पर मैं गाना सुनना चाहूंगा, हमसे बढ़कर कौन मूवी का, देवा देवा गणपति देवा।
0: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आस पास? अच्छा,
1: नहीं आते, हमारे गाँव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
0: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूं मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था। आज
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25-30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोकनगर में लगता है जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर एमपी में ही लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
1: हाँ जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा, और क्या क्या चीजें मिलती हैं? भाई हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं तो किसी को

0: टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
1: तो टिक्की चाट
0: बचपन किया था।
1: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
0: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है। मैम ऐसे जब साथ में खाते हैं ना तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
1: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परभणी से। सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच
1: हमारी
0: पटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
2: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए।
2: बारिश बारिश तो नहीं, कई कई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल। और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंटर कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेलो फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंटर कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंटर कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंटर कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंटर श्रीनगर से मलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
0: जी,
1: और
0: अच्छा।
1: बड़गाम इस बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहती है। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
1: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया, तो बहुत अच्छा, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
1: बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है।
0: बारिश हो रही है,
1: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है, और उसके पिच लगाना बहुत आसान होते हैं। फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बस उसमें क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते और एक दूसरे पर फेंकते
0: हैं,
1: बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने देखा है 2-4 बार।
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले चाहे ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, यानी कि बोले पंचेश्वर में गाते हैं बावरी गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का।
0: जी जी,
1: उसमें मशीन में डाला जाता है।
0: हाँ।
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है।
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं और
1: जी जी मैम
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू तब यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं वहाँ पर? क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है।
1: जी जी अच्छा।
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है। और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते,
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि वहां से एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक वहाँ सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहाँ से? जंगल
0: दूर है हमारे यहाँ से।
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के?
0: झाड़ ऊंचे तो याद
1: इस तरह से कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख भींचे, घास चुप है, घास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने की आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में बताना चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
0: जी जी जी जी।
1: एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए, जंगल तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके। और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे।
0: बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहे तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
0: अभी तो धान बहुत आया था और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल। और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मिठास होती है उनमें। कौन कौन से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमा

0: या ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए।
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी,
0: कौन बोल रही
1: हैं? नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ
0: जी। बताइए नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी,
1: विविध भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी, छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से
0: जी।
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रही कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा? आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे?
1: जी, हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी।
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी।
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहे, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना।

0: कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे? कुछ
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है, इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं, तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है? मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ, और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या बात है,
1: थिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुमे घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से।
0: हाँ।
1: और आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं।

0: जैसे नाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्योहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
1: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे
0: जी। बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो और पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
1: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ,
0: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है जैसे कि कचौड़ी गली में है और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
1: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
0: जी
1: याद है तो सुनाइए जरा।
0: जी नहीं हम गा सकते,
1: नहीं गा सकते,
0: नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाबू जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मैसूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनम रे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का जो भी सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
1: नहीं मिल पाता वो स्वाद नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है, तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है। और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
0: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर सब घाट ही घाट घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
1: जी जी
0: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
1: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी।
0: हाँ,
1: उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। हारमोनियम बजा कर ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है।
1: मैं गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात। हाँ, है
1: जी, हमारे गुरुजी है वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उन लोग उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: और हर मंगलवार और तो ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, भाई जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो अब
0: जी, बिल्कुल,
1: कौन सा
0: और बताना चाहूंगा मैं। हाँ। उससे पहले बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर, मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म काना में इतिहास और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022 और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

0: है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।
1: नमस्कार, मी अंकिता आपटे। ऐकूयात काही ठळक घडामोडी। 79वा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन आज साजरा

जिंदगी को परिभाषित करना मुहाल है, पर मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। कहीं रंगीन सा ख्वाब है तो कहीं कभी न खत्म होने वाली एक रूमानी यात्रा। हाँ, जो तुमसे शुरू हुई है और तुम्ही पर आकर खत्म। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी भावनाओं को महसूस करने के लिए एक अतिरिक्त दिल की जरूरत है।

इस रूमानी सफर का हर मोड़ हर नजारा अब सिर्फ तुम्हारे होने से हसीन है, सिर्फ तुम और मैं और हमारी ये हसीन यात्रा। कहते हैं हम सफर प्यारा हो तो सफर का मजा मंजिल पाने से ज्यादा होता है, और हसीन सफर का हर पल इबादत बन जाता है। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करती हूँ जिस तरह मैं चांद से प्यार करती हूँ, जिसकी आत्मा से प्रकाश निकलता है।

शायरी गीत के सफर में आप हैं मंदाकिनी के साथ। इस हसीन यात्रा के साक्षी हैं ये गगनचुंबी देवदार के पेड़, जो मानो हवाओं के साथ लहराकर अपनी खुशी बयां कर रहे हों। हवाओं का ये शोर और पक्षियों का ये कलरव, देवदार, हवाएं, पक्षी और वो चांद, ये सभी इस यात्रा के हमसफर हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में

सफर हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को छू रहा है, पता है ना। इसी तरह आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं।

शायद तुम अनजान हो, पर मैं हर रात शाम की तन्हाई में भोर की पहली किरण में तुम्हारा नाम गुनगुनाती हूँ। हाँ, गुनगुनाती हूँ। मैंने अपनी बंद आँखों से तुम्हें महसूस किया है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी उल्फत की यह कशिश कभी महसूस होती है?

हाँ, हमें रिश्तों की नुमाइश नहीं चाहिए थी, वो जुड़ाव चाहिए था जो भीतर तक ठहर जाए। मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारी भुजाओं की चौड़ाई नहीं नापी, तुम्हारे भीतर की कोमलता को महसूस किया, संवेदनशीलता देखी, तुम्हारे मौन को सुना, और हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को खुरच खुरच कर देखा, है ना? भीतर से निकली मिट्टी को जांचा है हमने, परखा है हमने, तब जाकर एक दूसरे को चुना है हमने।

0: साठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जींचा संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18-40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
2: का हार्दिक स्वागत है।

अभी आपने सुखविंदर सिंह को फिल्म बाजीराव मस्तानी में सुना। रचनाकार थे प्रशांत इनगोल, संगीत श्रेयस पुरानिक का था। अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

जब जब फूल खिले, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। अब सुनिए उदित नारायण को, आशा भोसले को फिल्म लगान में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वाचलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म ब्रह्मचारी में, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ब्रह्मचारी फिल्म का गीत सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी

0: एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवक के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने। ये गीत है जब तक है जा फिल्म से। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने, गायिका नीति मोहन और सोफिया अशरफ।

0: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दवाई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: ये नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जुगनू फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत एसटी बर्मन का और रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

0: वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
3: तराने नए पुराने,
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सात बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम लेकर आएंगे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिले कार्यक्रम में तबला वादक आशीष विश्वास से यूनुस खान की बातचीत प्रसारित की जाएगी। रात 8 बजे वीएम

आनंद की लिखी नाटिका सुनिएगा जमीन के लोग, कार्यक्रम होगा हवा महल। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार हसरत जयपुरी पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी नेहा अगरकर। ढलती जाए रात 10:30 पर और रात 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये थे आज के शेष कार्यक्रम, अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज। कल आप सुनेंगे इसकी तीसरी कड़ी। 7 बजे प्रसारित करेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस। कल इसका 46वां भाग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2 बजे आप इसका पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुन सकते हैं। आज के फनकार कल ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शबाना आजमी पर। समय सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। रंग तरंग लेकर आएंगे दिन में 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। सदाबहार नगमे लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। दिन में 3 बजे बहने सुनेंगी हेलो सहेली। शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा रिहाई, लेखिका अलका सिन्हा। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप नियमित सुनते हैं शाम 5:30 पर। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा अनमोल यादें, जिसमें फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। रात 8 बजे हवा महल में शरद सिंह की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी बीवी ब्यूटी क्वीन। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी अनुराधा उपाध्याय।

अभी आपने विवाह फिल्म में उदित नारायण और श्रेया घोषाल को सुना। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए देव फिल्म का गीत अभिजीत और साथियों की आवाज में। निदा फासले के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

अभी आपने देव फिल्म का गीत सुना अभिजीत और साथियों की आवाज में। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आदेश श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम ज्योति कलश झलके।

हजार वाले उस्ताद अमन अली खां, अमर की बंदिश अमीर खान साहब गाया करते थे, तो वही बंदिश राग हंसत ध्वनि में मैं गाकर सुना रहा हूँ।

यह बंदिश मुझे बेहद पसंद है जो आमिर खान साहब का खुद का बनाया हुआ है। वह राग हंसक ध्वनि का तराना मैं आपको सुना रहा हूँ।

भिंडी बाजार वाले उस्ताद अमन अली खान साहब अमर बहुत ही अच्छे साहित्यिक रचनाकार थे। उनकी बंदिशों में यह एक हंसध्वनि की बंदिश बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे आज कई लोग गाया करते हैं। तो अमन अली खान अमर की वह खूबसूरत बंदिश हंसध्वनि में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अब मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा हूँ जो आमिर खान साहब ने झनक झनक पायल बाजे में प्रस्तुत की है।

0: संगीत सरिता में आज आपने गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुनी, ख्याल और तराने की विशेषताएं। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की थी। इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी आप कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनेंगे।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

श्रोताओं, आकाशवाणी मुंबई के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब से कुछ ही देर पश्चात शाम के 7 बजे मराठी भाषा में समाचार होंगे, जिन्हें हम अपने मुंबई केंद्र से प्रसारित करेंगे। तो आइए प्रतीक्षा करते हैं मराठी भाषा में समाचारों की।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरबदा सपड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दवाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज को फिल्म मुद्दत में। संगीत तैयार किया है बप्पी लहरी ने, बोली के हैं इंदिवर ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अवतार फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए, सुनिए उषा खन्ना को। संगीत तैयार किया है चित्रगुप्त ने, बोल लक्ष्मण शाहबादी के। फिल्म का नाम गंगा किनारे मुरा गांव।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बड़े दिल वाले। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम एक बार फिर से सुन ले, बड़े दिल वाला। इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार।
1: आप हैं विविध भारती के संग।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तबला वादक आशीष विश्वास से। तो आइए सुनते हैं तबला वादक आशीष विश्वास से यूनुस खान की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं तबला वादक आशीष विश्वास। आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस भाई, और मेरे तरफ से सबको, सब श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आशीष, बहुत बड़े कलाकारों के साथ तबले पर संगत करते हुए हमने आपको देखा है और साथ वक्त भी बिताया है, ये जो तबले का सफर है ये कहाँ से शुरू होता है आपकी जिंदगी में?
2: दरअसल मेरे घर में था संगीत का माहौल। मेरी बड़ी दीदी वो शास्त्रीय गायिका, वो अभी भी है, गाती है, और वो पहले रियाज करती थी, तो बनारस घराने के तबला वादक वो लोग भी आते थे रियाज के लिए।

0: धीरे प्रवेश हुआ, पता चल रहा है। फिर जब ये 10-11 साल हो गया, मैं थोड़ा मेरी सबके साथ संगत करने बैठता था, परकेशन बजाता था,
1: अच्छा
0: मंजीरा, तभी के ज़माने में मेरा का साथे थे, और फिर भजन में, फिर ख्याल ठुमड़ी में भी थोड़ा सा तबला संगत करता था, जो बेसिक बेसिक होते थे तो कर लेता था धीरे धीरे धीरे। फिर मैं तालीम शुरू किया, वही जो आते थे रियाज के लिए, तो उनसे मैं बैठ के थोड़ा सा सीखा, और जो वो सिखाते थे तो मैं बहुत जल्दी पिकअप कर लेता था, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारे अंदर म्यूजिक बैठा हुआ है तो टाइम नहीं लग रहा है।
1: आपका बचपन किस शहर में बीता और वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी संगीत की तालीम में बड़ी भूमिका निभाई है?
0: मैं कोलकाता से हूँ, और मेरे जो जगह है बहुत ही संगीतमय जगह है वो आसपास में, क्योंकि मेरे घर के 2-3 बंगला छोड़ के, घर छोड़ के नजरुल इस्लाम रहते थे।
1: वाह वाह यार।
0: फिर थोड़ा आगे जाके और भी गुणी गुणी कलाकार है, बहुत सारे लोग, तो अभी दूरदर्शन के भी रेडियो आर्टिस्ट सब लोग थे, बहुत पुराने सब लोग, तो वो जगह ही ऐसे ही थे, तो डेली कोई ना कोई कार्यक्रम होते ही थे। पहले मम्मी पापा बहुत इनकरेज किए, मेरी सिस्टर, और वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं संगीत में आऊँ, मगर वो लोग चाहते थे मैं सीखूँ एटलीस्ट। मैं जो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मन से।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, और जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत में स्वर कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं उसको फील करके मैं कोशिश करता हूँ, या जैसे लघु लाइट संगीत होती है उसमें पोएट्री क्या है हो रहा है, और जो गा रहे हैं उनकी गाने की गायकी क्या है, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप फिर बन जाता है।
1: संगीत की पूरी यात्रा और पढ़ाई, इसका तालमेल किस तरह से हुआ था?
0: धीरे धीरे धीरे पढ़ाई भी साथ साथ होते गया, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में है, तो पापा बिजनेस करते थे, तो और मम्मी भी पढ़ाती थी, मैथ्स टीचर थी, तो फिर धीरे धीरे घर में भी वही पढ़ाई का भी माहौल था, तो मैं करता था, और मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते थे, फिर बाद में बुलाते थे, तो मेरा उसमें मेरा ट्यूशन्स खर्चा भी हो जाते थे।
1: वाह वाह
0: जी। हाँ, कई जगह पे फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत जगह से मुझे बुलाया गया, तो मेरे पढ़ाई में बहुत असर पड़ रहा था, क्योंकि जब भी एग्जाम आता था मेरा कॉन्सर्ट्स आ गया, कोई वाइटल कॉन्सर्ट्स, तो अच्छे अच्छे लोग बुलाते थे, तो ऐसे माहौल मिल गया था मुझे वो टाइम पे, और कलकत्ता के जितने भी नामचीन आर्टिस्ट थे सब बुलाते थे मुझे, तो मैं चला जाता था। फिर मेरे स्कूल से भी सपोर्ट मिले, फिर बाद में थोड़ा सा मुश्किल होता था, फिर मैं धीरे धीरे धीरे धीरे उसको आगे थोड़ा किया, करने के बाद मुझे जर्नलिज्म में भी थोड़ा शौक था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो मैं तभी मुझे दूरदर्शन का भी एक डिपार्टमेंट अलग से था, प्राइवेट खास खबर बोल के, तो उसमें मुझे कल्चरल म्यूजिकली उन्होंने अपॉइंट किए थे ऐसे टेम्पररी।
1: अच्छा।
0: तो पॉकेट मनी के लिए, तो मुझे उन्होंने जो प्रोड्यूसर थे बोले तुमको आ जाओ, तुमको नॉलेज है, हम लोगों को ऐसे चाहिए बंदा कि तुम इंटरव्यू भी कवर करो और म्यूजिक समझ में आता है और करो देखो। तो मैं जाके रिपोर्टिंग करता था, तो उसमें भी मुझे काफी नॉलेज हुए धीरे धीरे, फिर करते करते करते आगे गया।
1: किस साल में आप मुंबई आए?
0: मैं आया था 2003 या 2004 में मैं आया था। आने के बाद फिर बाद में मुझे शेखर दा से परिचय हुए। शेखर दा से,
1: जाने माने गायक।
0: हाँ,
1: शेखर सेन जी,
0: शेखर दादा। फिर उनकी माता जी तभी गाती थी, ठुमरी गाती थी, तो उनसे बैठता था रियाज में, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिए, बोले तुम्हारी हाथ बहुत मीठा है, तुम जरूर बंगाल से होंगे। मैं बोला हाँ। तो फिर धीरे धीरे मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, फिर सिलसिला अपने आप कहाँ से शुरू हो गया, मगर इधर भी बहुत सारी चीज़ स्ट्रगल भी हुए, म्यूजिक के साथ साथ मुझे, मैं बहुत सारी जिंदगी भी देखा हूँ, बहुत सारा काम करना पड़ा कॉर्पोरेट में, डॉक्टर की फील्ड में, बहुत सारा नॉलेज भी हुआ, वो सब मेरे, मैं म्यूजिक में आ गया काम में।
1: अच्छा, जिंदगी में एक मौका ऐसा आया होगा जब आपको तय करना पड़ा होगा कि केवल म्यूजिक में अपना करियर खोजना है या पढ़ाई को जारी रखना है। ऐसे समय में घर वालों की क्या राय थी और आपने किस तरह से ये डिसीजन
0: जी
1: लिया?
0: थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल किए, ये सबकी जिंदगी में होता है, खास करके कलाकार की जिंदगी में। मेरी जिंदगी में भी ऐसे कुछ दौर आए थे जहाँ पे मैं थोड़ा सा सोच में बहुत था, और मैं क्या करूँ, और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो गया था, तो घर से दोनों तरफ से ही सपोर्ट थे कि तुमको समझना है, तुमको लड़ना है, हम लोग जिंदगी भर नहीं रहेंगे, सपोर्ट देंगे जो भी करोगे, तुम डिसाइड करो क्या करोगे, क्योंकि जो भी करोगे मन से करो। तुम पढ़ाई करते करते आधा पढ़ाई छोड़ के तुम फिर म्यूजिक में चले

0: जाओगे, ना इधर होगा ना उधर होगा। जो भी करना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि तुम्हारी लाइफ आगे बन रही है और तुम बचपन से ऑलरेडी इसमें बह रहे हो। कहीं ना कहीं आपको म्यूजिक ऐसी एक फील्ड है एकमात्र कि बहुत देना पड़ता है, खास करके अगर आपको पीछे से बैक सपोर्ट नहीं मिले, बिकॉज मेरा फिनेंशियल भी थोड़ा सा इश्यूज था। तो इसलिए मुझे, मैं अपने आप को ही पहले संभालते थे, फिर मैं सोचता था कि अगर मैं अपने आप को जितना जल्दी स्ट्रांग करूं तो मैं सपोर्ट भी दे पाऊंगा फैमिली को, और बॉम्बे में अगर रहना है तो कुछ भी करूं मुझे सपोर्ट अपने आप चाहिए, फिनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वापस मैं अगर छोड़ के मैं वापस धीरे धीरे इधर शुरू किया, वापस मैं कलकत्ता जाके पढ़ाई करूं या उसको मैं इधर भी कंटिन्यू करूं, फिर मुझे नहीं लग रहा मैं कितना कर पाऊंगा, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरा म्यूजिक सेकेंडरी बन जाएगा। और जब भी मैं धीरे धीरे जॉब भी करता था कोई भी क्षेत्र में, मैं सक्सेस हर जगह होता था, सब लोग मुझे पसंद करते थे कि अरे आप काम समझ जाते तो, मगर मुझे ये लगता था मेरा म्यूजिक पीछे छूट रहा है। फिर मैं एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे म्यूजिक ही करना है फुल टाइम,
1: और कोई काम,
0: और मुझे बहुत बड़े गुणी गुणी आर्टिस्ट ने कहा भी, आप अगर इधर आए हो तो आपको पूरा म्यूजिक में ध्यान देना पड़ेगा।
1: कोलकाता में किन बड़े कलाकारों के साथ आपने बजाया है और देश विदेश में उनकी संगत की है?
0: देखिए, कलकत्ता में तो मोस्टली मैं जब लाइट के आर्टिस्ट थे सबके साथ बजाया, हेमंती दी तो मैं सबके साथ, इवन मन्ना काका के साथ भी बजाया, मैं बहुत छोटा था।
1: क्या बात है
0: जी। तो और शास्त्रीय संगीत में मैं बहुत लोग थे, दीननाथ मिश्रा थे, पंडित दीननाथ मिश्रा, फिर श्यामल चैटर्जी उनके साथ भी थे। तो फिर और बॉम्बे में आने के बाद मुझे सबका मुझे मौका मिला था, क्योंकि मैं जाके रियाज में बैठता था इनके साथ। तो गुलाम मुस्तफा खान साहब, अजय पोहंकर जी, जिनका भी नाम आपने, जसराज जी, रतन भैया थे, रतन शर्मा, कोंकणा बैनर्जी
1: जी,
0: मुझे बहुत आर्टिस्ट के साथ मौका मिला बजाया मैं सबके साथ। इवन रशीद भाई के साथ भी मैं काम किया।
1: वाह वाह वाह
0: जी। थोड़ा बहुत ही काम किया, ज्यादा मुझे मौका नहीं मिला, फिर अपने आप हो गया। मगर एक सबके साथ होने के बाद एक आपके शायद टाइम आता है, मेरे लिए एक होता है, मैं मुझे वो कनेक्ट होता है ना, तभी मेरे मन से होता है कि हाँ मैं जाके संगत करूँ।
1: कितनी बड़ी चुनौती होती है एक तबला वादक के लिए अलग अलग कलाकारों के साथ संगत करना। आप लाइट म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक दोनों की दुनिया में सक्रिय हैं, और बल्कि फ्यूजन म्यूजिक तक आपके कदम हैं।
0: हाँ, चुनौती तो सब में है, ये तो चैलेंजिंग काम है सब में। तो वही है, आप मन से कितना कर पा रहे हैं वो मैं मानता हूँ, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। टफ बहुत, सब फील्ड में बहुत टफ है, कंपटीशन है। मगर आप अगर ऐसे सोच ले कि ठीक है ये मेरा मन से है, मुझे इसके साथ ही रहना है, निभाना है, तो फिर वो मुश्किल भी आसान हो जाता है। भलाई कितनी भी तकलीफ हो, बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं, और लाइट, खास करके लाइट, मुझे सिर्फ यही डर रहता है कि मैं ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ तो संगत करता हूँ ठीक है, मगर फिर धीरे धीरे मेरी क्वालिटी कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि फिनेंशियली भी ज़रूर ज़रूर अच्छा है, आपका अच्छा हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं मैं बहुत देखा हूँ बहुत म्यूजिशियंस की वो फिर म्यूज़िक कम हो जाते कितना भी, बिकॉज सबकी अलग अलग स्टाइल है और कंटिन्यूअसली आप काम करते जा रहे हैं, तो अपना म्यूजिक को बचा के काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, आपने जीवन के कुछ यादगार कॉन्सर्ट्स के बारे में बताएं जो भारत में या भारत के बाहर रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, भारत में है, जैसे अभी मैं कुछ साल पहले ही हुए थे NCPA में, तो मैं तो कर्नाटक आर्टिस्ट के साथ संगत करता था, मगर जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ उनके साथ मैं कभी संगत भी नहीं किया। तो वो मेरे सामने सब दिग्गज कलाकार बैठे थे, अजय चक्रवर्ती, पंडित अजय जी थे, सुरेश दादा थे, सुरेश तलवरकर जी थे, सब दिग्गज कलाकार थे NCPA में, और मैं शेखर दादा के साथ संगत करने बैठा हूँ। तो अचानक देखा अरुणा दीदी भी बैठ गई स्टेज पे, अरुणा साईराम, तो उन्होंने अचानक उनका कर्नाटक पद्धति में स्टार्ट कर दिया, तो मेरे हाथ से निकल गया आदि ताल की जो ताल। तो होने के बाद ऐसे लोग ने अप्रिशिएट किए, मैं जब भी जैसे स्टेज से उतरा तो अरुणा दीदी आके मुझे बोला, आशीष तुम मेरे साथ नहीं बजा रहे हो, आप जरूर कर्नाटक आर्टिस्ट के साथ बजाया। मैं बोला बहुत पहले मैं बजाया था, मुझे जो फील हुआ मैंने वो किया।
1: बाबा,
0: तो वो होने के बाद सब आर्टिस्ट लोग जो भी लोग थे उनसे इतना प्यार मिला मुझे, तो और सब आर्टिस्ट थे, तो एक चीज मुझे अच्छी लगी कि वो लोग म्यूजिकली मुझे तारीफ की, सिर्फ ऐसे

0: नहीं, तो मुझे उस चीज की बहुत खुशी हुई। और तभी मुझे, मैं मेरे गुरुजी को, माता पिता को याद किया कि कम से कम मेरे तबले से लोग खुश तो हुए।
1: वाह वाह,
0: बस मेरे लिए वो जीत है।
1: क्या बात है,
0: बस वो अवार्ड से कहीं ना कम नहीं है।
1: अच्छा, जो बच्चे अभी तबला सीख रहे हैं उनसे आप क्या बात कहना चाहेंगे, अपने अनुभव की बात, क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं और वो तबले को भी बैलेंस करते हुए चल रहे हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं?
0: मैं यही कहूंगा कि कोई म्यूजिक को प्यार करे, प्यार करना सीखे, और तबले को एकदम इंस्ट्रूमेंटल नहीं, उसको ऐसा रखे कि वो गाने की भी चीज़ है, हाथ से गायकी निकलना चाहिए। मतलब उसमें इतनी कोमलता होनी चाहिए कि आर्टिस्ट की जो टोन है वो टोन के हिसाब से वो संगत करे, ताकि शास्त्र के हिसाब से नहीं।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: क्योंकि शास्त्र नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और शास्त्र परफॉर्म के लिए कहीं जगह पे रोक जाता है, क्योंकि ज्यादा शास्त्र लेके आप परफॉर्म नहीं कर सकते। परफॉर्म तो, क्योंकि म्यूजिक है, मैं ये जो मानता हूँ या जो सुना हूँ, ये तो हवा में है, ये अपने काबू में नहीं होता है। जो बरेगुला मलिक खान साहब भी कह के गए, तो ये आप हम लोग इधर एक बैठ के एक ताल प्रैक्टिस की, जो ही ताल बजाए वही ताल 2 सेकंड में चेंज हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसकी ऑरा। तो इसके लिए फिक्स्ड कुछ नहीं है, नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज लेके, मगर आप उसकी पवित्र को कैसे आप रखेंगे, उसके हिसाब से आपको संगत समझ के संगत करना है। मैं यही कहूँगा जो भी जनरेशन्स, नए जनरेशन्स आ रहे हैं, कि पहले म्यूजिक को प्यार करे, तबले को प्यार करे, और गाने के हिसाब से प्यार करे, और गाने को प्यार करे पहले।
1: वाह वाह, गायकी को। आशीष विश्वास, बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की।
0: धन्यवाद, आभारी हूँ मैं।
1: थैंक यू।
2: इनसे मिले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तबला वादक आशीष विश्वास से यूनुस खान की ये बातचीत। तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: इनसे मिलिए।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज सुनिए वीएम आनंद की लिखी नाटिका जमीन के लोग।
1: मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे।
2: क्या हो गया है तुम्हें?
1: क्या
2: मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है और अभी तक तुमने नाश्ता भी तैयार नहीं किया है।
1: श्रीमती जी, क्यों सवेरे सवेरे नाराज हो रही हो? चूल्हा जलाने में देर हो गई थी।
2: आज कोई नई बात थोड़ी है। हाँ। कोई काम तुमने वक्त पर कभी किया है? नाश्ता तुम नहीं बना सकते। हाँ। खाना तुम नहीं बना सकते। हाँ। बच्चा रोता रहता है, उसे तुम बोतल से दूध भी नहीं पिला सकते।
1: दूध?
2: शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप कहते थे, लड़का घर के सारे काम काज, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई में एकदम माहिर है। लेकिन मैंने तुमसे शादी क्या की है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई।
1: सुबह सवेरे उठता हूँ, काम पर लग जाता हूँ, फिर भी तुम मुझे हर वक्त डांटती रहती हो।
2: ओहो, ना जाने इन चांद के मर्दों की रोने की आदत कब जाएगी। जरा सा डांट डपट दो, बस रोना शुरू हो जाता है।
1: शुक्र मना परमात्मा का जो तुम चांद पर पैदा हो गई। अगर जमीन पर पैदा होती तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता।
2: क्यों? जमीन पर मुझे क्या करना पड़ता जी?
1: जमीन पर घर का सारा काम काज स्त्रियां करती हैं, स्त्रियां, और आदमी मजे में बैठकर गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताश खेलते हैं।
2: वाह वाह वाह, जमीन की बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई भला?
1: हमें? अब तो जमीन की सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ चांद के लोगों को पता चलती जा रही है। तुम्हें पता नहीं, जमीन से यहाँ चांद पर रॉकेट आने शुरू हो गए। रॉकेट?
2: रॉकेट?
1: हाँ, अभी पिछले दिनों ही तो एक रॉकेट में जमीन से दो आदमी यहाँ चांद पर आए थे।
2: अरे अरे, देखो देखो, वो देखो, वो कौन सी चीज है जो हमारे चांद पर उतर रही? वो सांप।
1: अरे वही तो है रॉकेट। आज एक और रॉकेट जमीन से आ गया।
2: देखो तो वो उस रॉकेट में से आदमी बाहर निकल रहा है।
1: और देखो देखो देखो, अब एक औरत बाहर निकल रही है।
2: अरे सुनो, इस रॉकेट में तो बच्चे भी आए हैं।
1: बच्चे?
2: हाँ, अब वो देखो, वो एक
1: दो
2: तीन चार पांच, ओहो ना जाने कितने और हैं। हाय राम, एक फैमिली के इतने बच्चे।
1: अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? एक फैमिली के इतने बच्चे भला कैसे हो सकते हैं? लगता है जमीन के किसी स्कूल के बच्चे होंगे।
2: या इनके अड़ोस पड़ोस के बच्चे होंगे।
1: ये भी हो सकता।
2: हाँ, उन्हें घुमाने के लिए लाए होंगे। चलो चलकर उनसे बातचीत करें।
1: जरूर, आज तो दिल खोल कर उनसे बातें करेंगे, उनसे जमीन के बारे में, जमीन के लोगों के बारे में हालचाल पूछेंगे। चलो चलो
2: चलो चलो
3: चलो। बच्चों की माँ, चलो कहीं घूमने चले।
4: अरे जरा ठहरो तो।
3: क्यों?
4: जरा सी बिंदी भी तो लगा लूं। और थोड़ी लिपस्टिक भी।
3: ओहो, घंटों लगा रही।
4: देखिए कहीं कोई मिल गया तो बुरा मालूम होता है।
3: एक दर्जन बच्चे हो गए, समझी, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तुम्हारी ये बिंदी और लिपस्टिक नहीं गई।
1: मैंने कहा जी नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
1: जी हम यहाँ चांद के बाशिंदे हैं।
5: नमस्ते जी।
4: नमस्ते जी। जी जी, हम जमीन से आए हैं।
5: जी ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: हाँ जी।
5: चलो अच्छा है, आप लोगों के आने से यहाँ कुछ हलचल तो हो जाएगी। वो मेरा मतलब है कुछ रौनक हो जाएगी।
1: और सुनाइए, जमीन पर लोगों के क्या हाल है भाई साहब?
3: जमीन पर?
1: हाँ?
3: जमीन पर लोग मजे में हैं।
1: मजे में?
3: बिल्कुल, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं साहब।
5: हाँ जी, वो तो नजर ही आ रहा है।
4: नजर आ रहा है?
1: मतलब ये है कि वहाँ लोग जरूर तरक्की कर रहे होंगे। अब देखिए ना, आप आए हैं, अपने साथ कितनी रौनक लाए हैं। मेरा मतलब है स्कूल के बच्चे वगैरह भी साथ ले आए।
4: स्कूल के बच्चे?
1: हमारा मतलब है स्कूल के नहीं तो अड़ोस पड़ोस वालों के होंगे। फिर भी देखिए ना कितने अच्छे हैं ये सब बच्चे। मैं कहता हूँ देखिए ना, सबकी शक्लें एक सी नजर आ रही
4: है। अरे वो ये बच्चे आपको स्कूल के बच्चे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे नजर आ रहे हैं?
3: भाई साहब, आपको ये जानकर खुशी होगी।
1: हाँ।
3: कि ये सब बच्चे।
1: हाँ।
3: हमारे अपने
2: क्या ये तमाम बच्चे आपके?
6: बाप रे, तब तो जमीन के लोगों की बहुत आउटपुट है।
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
7: और सुनाइए भाई साहब, जमीन की बातें सुनाइए, जमीन के लोगों की बातें सुनाइए।
2: क्या ये सच है कि जमीन पर औरतों को बहुत काम करना पड़ता है?
4: अरे काम की तो पूछो ही नहीं, जमीन पर औरतों को घर बार का सारा काम अपने आप करना पड़ता है, और कई बार तो उन बेचारियों को एक वक्त में दो दो काम करने पड़ जाते हैं।
2: एक वक्त में दो दो काम?
4: हाँ हाँ, बेचारी स्वेटर भी बुनती रहती हैं और आस पड़ोस की औरतों से लड़ाई झगड़ा भी करती रहती हैं। मेरा मतलब ये है कि कितनी जबरदस्त लड़ाई क्यों ना हो, मचाल है जो बुनने में जरा भी गलती हो जाए।
2: ओहो बेचारी जमीन की औरतें।
7: अब तो सुन लिया तुमने।
4: अरे मैं कहती हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, जब अपने पतियों के साथ बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, हाँ? तो उसे सारा का सारा पर्स अकेले ही उठाना पड़ता है।
2: सारा का सारा पर्स?
4: हाँ हाँ सारा पर्स।
2: और बाजार जाते समय मर्दों को क्या क्या उठाना हाँ, पड़ता है?
7: हाँ भाई साहब ये भी बताइए।
3: हम मर्दों के वहाँ बड़े मजे हैं साहब।
7: अच्छा
3: उनको क्या उठाना पड़ता है? सिर्फ तीन चार पैकेट सामान के,
7: ये
3: एक दो थैले सब्जी के,
7: सब्जी के
3: एक आध बच्चा कंधे पर, एक आध बच्चा बगल में, एक दो बच्चे उंगली पकड़े हुए,

0: से बाजार में जा।
1: सुना तुमने, मैं कहता हूँ कमाल है साहब, कमाल है। जमीन पर मर्दों के ठाट का जवाब नहीं है। आहा।
0: सो तो ठीक है।
2: देखिए, हाँ ये भी बताइए, जमीन की क्या क्या चीजें मशहूर हैं?
3: भाई साहब, जमीन की तो बहुत सी चीजें मशहूर हैं। वहाँ की फिल्में मशहूर हैं।
1: फिल्में?
3: हाँ, फिल्मी गाने मशहूर हैं।
1: फिल्में, फिल्मी गाने? क्या?
0: अरे साहब, हर फिल्म की कहानी गजब की होती है। सबसे पहले एक लड़के और लड़की में मोहब्बत हो जाती।
1: मोहब्बत? ये मोहब्बत किस चिड़िया का नाम?
3: अरे फिटे मुंह, तुम लोग ठार झोंकने के लिए यहाँ पैदा हुए हो क्या, जो इतना भी पता नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है?
0: अजी जनाब, मोहब्बत शादी से पहले की एक फॉर्मेलिटी होती है।
1: अच्छा।
0: जो शादी होते ही खत्म हो जाती है।
1: सुना तुमने?
2: लेकिन मोहब्बत होती कैसे है?
1: होती कैसे भाई साहब?
0: मोहब्बत? अजी मोहब्बत बड़ी आसानी से हो जाती है।
1: अच्छा।
0: हीरो और हीरोइन यानी के लड़का और लड़की आमने सामने से आते हैं। हीरो साइकिल पर हो तो हीरोइन कार में होती है।
3: अच्छा।
0: हीरो कार में हो तो हीरोइन साइकिल पर, या हीरो घोड़े पर है तो हीरोइन जीप में, या हीरो टांगे में है तो हीरोइन रिक्शा में, या फटफटी में है या स्कूटर में। कोई सी भी कन्वीनियंस क्यों ना हो, उनकी आपस में टक्कर जरूर हो जाती। और टक्कर होते ही हीरोइन हीरो को इडियट और शट अप कहती
1: है। ये सुना?
3: और जो ही वो हीरो के गाल पर तड़क से थप्पड़ लगाती है तो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं मोहब्बत हो गई।
1: हो गई।
4: क्या मोहब्बत हुई है? बा, बा, बा, बा, बा, बा, बा, बा, बा। भाई बड़ा ही शानदार तरीका है जमीन पर मोहब्बत करने का।
0: सो तो है।
2: अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जी?
0: उसके बाद एक विलेन न जाने कहां से आन टपकता है।
1: विलेन?
0: और वो हीरोइन को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है।
1: अच्छा।
0: विलन एक हाथ में हीरोइन का हाथ पकड़े रहता है। हाँ। और दूसरे हाथ से जीप चलाता है या घोड़ा दौड़ाता है।
2: लेकिन वो हीरोइन विलन से अपना हाथ तो छुड़ा सकती है ना?
3: ओ, हीरोइन अपना हाथ कैसे छुड़ा सकती है? हीरोइन का हाथ विलन के हाथ में नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर के हाथ में होता है।
1: देखा तुमने भाई साहब? उसके बाद क्या होता?
0: उसके बाद विलेन हीरोइन से शादी करने की कोशिश करता है।
1: अच्छा।
0: शादी मुकम्मल होने में जब एक मिनट बाकी रह जाता,
1: एक मिनट,
0: तो हीरो वहाँ पहुँच जाता है।
1: अच्छा।
0: और हीरोइन को बचा लेता है।
2: और अगर हीरो वक्त पर ना पहुँचे तब क्या होता
3: है? लोग कैसे ना पहुँचे, आखिर हीरो को पैसे किस चीज के मिलते हैं? अरे हीरो की तो यही ड्यूटी होती है कि वो वक्त पर पहुँच कर विलन की खूब पिटाई कर दे और हीरोइन को बचा कर उससे शादी कर दे।
1: जमीन पर शादी कैसे होती है?
0: शादी जब दूल्हा बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचता है तो इस फिल्मी गाने का रिकॉर्ड बज रहा होता है।
1: किस?
0: लाज किनारे परवा कर अरमान की कश्ती डूब गई।
3: और जब दूल्हा और दुल्हन के फेरे हो रहे होते हैं आए तो कौन से गाने की आवाज आती है?
1: हाँ भाई साहब,
0: वो गाना।
3: हाँ हाँ।
0: कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद न हो। अरे कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद न हो। दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद न हो। और दुल्हा दुल्हन को डोली में लेकर चलता है तो इस गाने की आवाज सुनाई देती।
1: किस गाने की?
0: हम जो अपनी मौत का हर सामान ले चले
1: लिया। और फिर शादी के बाद क्या होता है?
0: शादी के बाद क्या होता? कमाल है। अजी भाई साहब, ये भी बताना पड़ेगा क्या? देखा नहीं हमारी पलटन को?
2: हाँ जी, वो तो देख लिया। पर हमारा मतलब है जमीन पर शादी के बाद लड़के और लड़की में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता?
0: अरे लड़ाई झगड़ा? अजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: देखा तुमने? बिल्कुल नहीं।
0: जमीन पर हर घर में चैन।

0: की बंसी बजती
1: है। बंसी बजती है,
0: वाह वाह क्या कहें, वहाँ पति पत्नी आपस में कभी नहीं लड़ती, कभी नहीं झगड़ती। क्या बच्चों की माँ, हम आपस में कभी लड़े कभी झगड़े, बताओ?
2: कभी नहीं झगड़े, कभी नहीं। अरे लड़ने झगड़ने का तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कौन लड़ती है, मेरी चोटी।
0: देखो बच्चों की भाई, बता दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, मेरे सामने जूती का नाम ना लिया तुमने।
2: हाय हाय, तो क्या हो गया जो मैंने जूती का नाम ले लिया? अरे तुम्हें जूती दिखाई
0: का? क्या जूती? जूती दिखाना तुम अपने पापा को, हाँ अपने घर वालों को?
2: एक खबरदार, जो मेरे घर वालों का नाम लिया, कह देती हो? हाँ, अब तो मैं यहाँ एक खड़ी भी नहीं रुकूंगी, एक नौ मिनट भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ जी अपने मायके।
0: मायके?
2: मायके जी हाँ, संभालो तुम अपनी इस पलटन को।
0: अरे सारी की सारी रेजगारी छोड़कर चली गई, गिनते गिनते मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे सुनती हो, ए बच्चों की माँ, ए बच्चों की माँ, रुक जाओ। चांद के भाई साहब।
1: हाँ जमीन के भाई साहब। हाँ जमीन के भाई साहब।
0: ये मत समझना, ये हमारी लड़ाई है।
1: अच्छा नहीं है?
0: दरअसल जमीन पर जब भी किसी औरत को अपने मायके जाना होता है, वो इसी तरह का नाटक करती है।
3: तो ये थी नाटिका जमीन के लोग, लेखक वी एम आनंद, निर्देशक दीनानाथ। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पलक मुच्छल के गाए गीत से, बोल अनजान के संगीत सुधाकर शर्मा का, फिल्म का नाम वेलकम वेडिंग।

लीजिए अब सुनिए सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में मयूर पुरी का लिखा गीत, आवाजें दिव्य कुमार और प्रिया शर्मा की, फिल्म का नाम ABCD2।

0: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दस पड़ बेचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दवाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अन्विता दत्त का लिखा और प्रीतम का संगीत बद्ध किया बदमाश कंपनी फिल्म का गीत, आवाज बेनी दयाल की।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश परमाणु फिल्म से, द परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। गीत को गा रहे हैं यासिर देसाई और जीत गांगुली, बोल रश्मि बेरा के संगीत जीत गांगुली का ही।

अभी आपने यासिर देसाई और जीत गांगुली को सुना, फिल्म थी परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर

0: काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: दी अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी, क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
5: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में

0: नागरिकों की भागीदारी के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
2: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
0: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गाँवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000

0: करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लिबास फिल्म के गीत से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का।

दिल है कि मानता नहीं। अभी आपने इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को सुना। अब सुनिए आरती मुखर्जी को, फिल्म है मासूम। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए। इस बार फिल्म है रजिया सुल्तान, आवाज लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है जानिसार अख्तर ने।

अभी आपने जगजीत सिंह को फिल्म अर्थ में सुना। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पियाए।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है, जब हसरत जयपुरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। क्योंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे, मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने खुमार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पहलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अम्बेडकर

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,

पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आंखों में पलने वाले पहले सपने अक्सर बहुत मासूम होते हैं। उनमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां शामिल होती हैं। कभी कुछ बनने का सपना, कभी दूर कहीं घूम आने की चाह। समय के साथ सपनों का आकार बदलता है, लेकिन उनकी चमक मन में बनी रहती है। कुछ सपने पूरे होकर जीवन को खूबसूरत बना देते हैं, तो कुछ अधूरे रहकर भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

न जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम यह है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

अगर जीवन एक बगिया है तो हमारे रिश्ते उसमें खिलते अलग अलग फूल। कुछ फूल खुशियों की खुशबू देते हैं तो कुछ अनुभवों के रंग भरते हैं। कभी मौसम सुहाना होता है तो कभी आंधियां भी आती हैं, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें कीजिए।

प्रेम में दो लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है? चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के चाय गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।